नमस्कार, सुप्रभात। 228 बयान 3.6 मीटर्स एटले के 1,304 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी नो भूज केंद्र छे। आज गुरुवार ज्येष्ठ दिनांक 4 शक संवत 1947 एटले के 25 जून 2026 अत्यारे सवारना 5 वागे में 58 मिनिट्स अने 35 सेकंड्स थई छे। અમારી પ્રાતઃ સભાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ મગજ સાથે।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और नए भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जुड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की निर्देशिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विचार बंधु स्वस्थता पठन कर कल्पना मेहता।

सर, वसंत लाल जोशी, शब्द रचना भारती हरजी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और नए भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कॉयल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस

0: छात्रा व्यापारी और नर्स सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कई टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of the year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of the emergency. The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lippu Lake Pass in Pitoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. Trade officer and director of subdivision magistrate Ashish Joshi said 26 trade passes have been issued, which include 17 traders and 9 helpers. A customs office has also been opened at Gunji to facilitate the process. Mr. Joshi informed that traders have already stored their goods in warehouses at villages near the Lippu Lake Pass. The India-China border trade originally resumed in 1991, but was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic. House-to-house enumeration of special intensive revision SIR of electoral rolls is set to start in Delhi from the 30th of this month. In this regard, the Chief Electoral Officer, CEO of Delhi, shared a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. The CEO office said representatives of various political parties, including Bharatiya Janata Party, Aam Aadmi Party and Indian National Congress, attended the meeting. The CEO informed them about the main objective of the SIR, no eligible citizen is left out or no ineligible person is included in the electoral roll. The Department of Rural Development will organize a national workshop on leveraging AI in rural development in New Delhi today. The Ministry of Rural Development said that the day-long event will serve as a collaborative platform to align cutting-edge technological innovations with the grassroots developmental needs of rural India. Key stakeholders like NITI Aayog, the India AI Mission, leading industry consultancies, technology startups, academia, and knowledge partners will deliberate on the transformative potential of artificial intelligence in accelerating rural development outcomes. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections. Mr. Modi received a call from his Armenian counterpart yesterday. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. In a social media post, Prime Minister Modi said they reaffirmed the shared commitment to further strengthen the warm and multifaceted partnership between India and Armenia across key sectors. In men's cricket, a two-match multi-day series between India A and Sri Lanka A will begin at Goa International Stadium in Sri Lanka this morning. The match will begin at 10 a.m. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित

0: करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर ने भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सत्यम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून

0: जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शन के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष जन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्या मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष जन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तेरातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपु लेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: मंजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्हें सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान निपुण कर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को निपुण दर्जे तक पहुँचने के लिए माधी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान

0: श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कॉल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस एस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकुए के जुमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फिलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वे अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और

0: बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस।

0: government offers, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdles tears, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35 to 43%. And extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarah. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Sangvidhan Bhavan Mukhyalaya is being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
2: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छह मुख्य समाचार। शाला प्रवेशोत्सव में 2 दिवस दरमियान राज्यभर में 11,20,000 से वधु विद्यार्थियों ने नामांकन। राज्य में प्रवासन और यात्रा दौड़ ने कार्यकाल उद्देश्य साथ 3,28,00,000 विकास कामों ने मंजूरी। उन्होंने हरमोज सामुदायिक भूमि द्वारा एक काम चलाए दरियाई कॉरिडोर खोलने की जाहरात करी। अरवली में आंगनबाड़ी ने बालकों माटी में पोषण आहार में गेंद कर दी है फरी चल पाई। ऑनलाइन गेमिंग वाले ट्रेडिंग कॉपेंड में अहमदाबाद में थी 5वीं दर पकड़। सी इंटरमीडिएट में जाहिर फैला परिणाम हुआ, अहमदाबाद में 3 विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया 50 रैंक में स्थान। मुद्रा विमान निर्माण साथ ही संकड़े वडोदरा में किशोर मिस्त्री ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलकर पसंद की। फुटसल कप चैंपियनशिप में गुजरात ने मध्य प्रदेश ने हरियाणा ने सेमीफाइनल में प्रवेश करो। आज ज्येष्ठ शुद्ध पक्ष ने एकादशी तिथि में गायत्री जयंती पर्व उजाणा आवश्य। जिला रोजगार कचेरी भोज और औद्योगिक तालीम संस्था अंजान में संयुक्त उपक्रम में आईजीआईटी अंजान खाते जिला कक्षा में अप्रेंटिसशिप और रोजगार भर्ती मेला का आयोजन। भोज प्रादेशिक परिवहन कचेरी खाते आधुनिक एआई आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम में प्रारंभ करायो। भू रक्षा, जल रक्षा, जीव रक्षा और पर्यावरण रक्षा ने लक्ष्य साथ मुंद्रा तालुका में प्राकपुर चौकड़ी खाते छेल्ला 36 वर्ष से कार्यरत एंकर वाला अहिंसा धाम भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र खाते जून महीना में अंत 2 दिवसीय जीव दया सम्मेलन और अहिंसा अवार्ड वितरण कार्यक्रम योजा। महानगर मुंबई में छेल्ले 24 कलाक में 350 मिलीमीटर एट्ले कि 14 इंच जेटला अंधाधार वरसाद थी मार्ग पर जलभंग था। वरसाद ने आगमन में जोवाती वाट वच्चे गईकाले सवार थी जिले में धूप छाने माहौल छवायो। हवे पछीना समाचार 9:30 मिनिटे अपाशे।

Sekian Dunal Singrol, Marani Singrol, Nimesh Singrol, Neha Arwanya Singrol जी ने 2000 भेजते हुए लिखा है, दूसरे को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबेना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम गलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। सौ रोड मोसैनिया से गुलाब शाह इदरीसी, हसीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद बागिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपके सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत के अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे बोरला की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोरला गुहलू कहा जाता है। वैसे की बहुत जाने माने नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। स्वतः माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। स्वतः यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधारें यहाँ के चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही है। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल ये एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खराब होना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा

बीच पर आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खराबे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खराबे हुए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक है कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। कहना वाली अद्भुत बात सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोरना गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देख कर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोरा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोरा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8 0 0 4 4 0 5 5 9

की भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने

भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के

विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।

0: संग होते हैं, जिनका स्वच्छ चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेगा।
0: सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेगा जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजू भाई बधेगा का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेगा था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल

0: स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत प्रेरणादायक थी, लेकिन रटन की पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपनी बचपन की यात्रा पूरी शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को

0: था कि सबको याद करके आना है। याद क्या है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। जीतू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता।

0: सुरक्षा समूह की और 75 अध्ययन के लिए बम्बई चले गए जो आज एमबी कहलाता है।
1: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन भूल गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
0: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा। स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेट की मार खाना। क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूँ कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं है जिससे बच्चे सीखें, लेकिन बिना तनाव के भय मुक्त होकर इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।

0: पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकों लोक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए

0: शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिगी भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा। सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मॉन्टेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जैसे गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनका ये महान कार्य

0: गिजु भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनके माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मोछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजु भाई अक्सर कहा करते थे, शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाओ नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अवगत है, अज्ञान नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जितेश कुमार जी, जिन्होंने गिजु भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजु भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
2: जी।
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
2: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
0: जी,
2: लेकिन कुछ खास है जिन पर मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नाटक करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
2: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़े ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
2: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
2: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
2: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ,
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
2: जी।

0: जिसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
0: साथियों, अभी आपने गिजी भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजी भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनके नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजी भाई ने 100 से भी अधिक बाल उपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है गिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई के लिए एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
0: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है। प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। बालकों में बौद्धिक शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रतन की शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
0: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सके और अनुभव प्राप्त कर सके।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी।

0: Opțiuni unise în Talisco. Fixa că cetrina să mă pet. Is cărmăt or vilakșan are părtatea. Nidhan ho gaya.
1: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विजू भाई बदले का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल तकनीकी समन्वय बटु लैंगलिंगो ध्वनिंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान कलाकार शिमाइला परवेज विनय शर्मा असर नवाज उस्मानी सुनील लोहिया और परवेज गोहर आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना

आइए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावना क्या क्या है और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

So, can I have the double?

ऊपर सारा पुलिस चीनो प्रवेश द्वार से प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित सारा प्रवेश निर्धार साथ आगे वधारी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल 23, 24 और 25 जून समग्र राज्य में योजा से सारा

0: के जुड़े हुए थे। मिथुन गुजरात अभियान, नया राज्य अभ्यासक्रम एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क SQAAF द्वारा शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षण ने वधु सशक्त बना फरमा रही है। गुणोत्सव शिक्षण में श्रेष्ठता ने नवी ओळख बनी रही है। विकसित गुजरात ने पाया मजबूत बनाव तो गुणवत्ता सभा शिक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षण उज्जवल भविष्य। शिक्षण विभाग गुजरात सरकार।
1: सिकंदर तू अत्यारे दरिया जाय छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिया ना जवाय अने माछीमारी ना कराय, समझो?
1: ए बराबर, मानसून ब्रेक दरमियान दरिया खेलवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हा, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया मा देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्टेशन में पहुंच गए थे। आप सब रिहा चुन हिंदी फिल्म संगीत में कार्यक्रम मनोरंजन। आज अभिनेत्री करिश्मा कपूर जन्मदिवस पर विशेष फिल्म गीतों सांभ रिया।

क्या बोला था है? अच्छा तुम और शांति लाल भाई? अच्छा यानी कभी तो बोला था ओके तेरी पार्टी घर में शांति लाल भाई वर्षाद अच्छी पहले जो सब ऊपर उठने थे पहले ऊपर उठते हैं तो हैं

0: فون كده يا صاحبي.
1: परिवार में आज 1% की जो डेट प्रस्तुत है,
2: धन्यवाद।

0: बसंत
1: नमस्कार
0: नमस्कार की बोलता बस इतने दिन भरे हुए रहे सुनाए जी क्या गीत सुनाए
1: हाँ

0: जी जी जी जी अंजिसनपुर में परिवार में अंजिमन पसंद मुझे भी प्रस्तुत है अतिजय प्रदीप भाई नमस्कार हेलो आकाशवाणी बहुत अच्छी फोन है आज पसंद बस बड़े बड़े किए हैं खूब सांस पसंद है कन्या हृदय जगीत है जी जी जी जी हाँ देते हैं खूब सांस गीत जी पसंद है जी जी कह रही है साथी अब्दुल भाई
1: अपने
0: जी

0: ప్రసన్న? నమస్కార్,
1: પરિવારમાં
0: જીવન પસંદગી જો કઈ પ્રસ્તુત હોય?

0: California 90%.
1: Hello,
0: Ati, what's possible at the Bharti Bangor? Ati, Bharti Bangor, what time is it? What time is it?
1: मैं
0: सचिवालय में आई हूँ। वाह सक्रिय दम भर भर कहीं घर में आज मस्ती में?
1: मैं मस्ती में घर में बैठी हूँ। आज

এই আকাশবাণী ভোজ কাছে ফোন এনে আছে প্রসেন জি আকাশবাণী ভোজ

कल्याणी को ठाकर ने स्वर में आहते सुरेश दलाली गे प्रश्न गैर फिल्म में गुजराती गीतों कार्यक्रम में हमें सांभ मुकेश जोशी ने गीत प्रश्न स्वर्शीय आकाशवाणी गायक वृंदनों।

अनुपरिक्ने स्वरमा आहतै तुषार शुक्लाले गीत रचना श्रोतामित्र सम्झिरहेछु डर फिल्मी गुजराती गीतोलो कार्यक्रम आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ोदर राजकोट तथा भूज केन्द्र पर थी कार्यक्रम में हवे सांभिए मीराबाई ने गीत रचना स्वर आरती मुंशी नो

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भुज राज्यभर से महिलाओं माटेनो कार्यक्रम सहियर।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस सीट लगना। अरे
0: वाह, अजाड़े लिंक्स पर क्लिक ना करो, RBI कहे छे
2: वर्ल्ड कार्ड बनो सतर्क रहो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय निर्माण गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19, acts of terrorism or the impact of extreme climate events.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: Union Minister of Power Manohar Lal has said that India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems. Inaugurating the 11th meeting of BRICS energy ministers in Gurugram today, the minister said affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving developmental aspirations and the sustainable development goals.
3: Future energy systems must balance sustainability with reliability. India is making significant investments across the entire energy value chain. India is laying the foundation for one of the world's largest digitally enabled electricity systems. More than 60 million smart meters have already been deployed, and this transformation will continue at scale in the coming years, empowering consumers while strengthening utility performance.
1: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub-and-spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. Speaking on the occasion, the minister said the new hub-and-spoke model paves the way for a monumental shift in how citizens travel. Air Chief Marshal Amarpreet Singh today released the memoir of Group Captain Shubhanshu Shukla, The Second Orbit, Belief of a Man, Dreams of 1.4 Billion Hearts, in New Delhi. The event commemorated the first anniversary of Group Captain Shukla's landmark Axiom 4 mission, which was launched on the 25th of June last year. Addressing the media, Air Chief Marshal Amarpreet Singh emphasized that the book will be a great motivator for the coming generation. The Enforcement Directorate ED today conducted search operations at multiple premises in Ghaziabad and Delhi in connection with a land fraud and money laundering case involving Sandeep Singh, promoters of Shrasht Prop Build Private Limited and office bearers of Seva Suraksha Sahakari Awas Samiti. ED officials said the accused allegedly induced members of the Housing Society to surrender their rights over approximately 41,544 square meters of land located at Akbarpur Bahrampur in Ghaziabad, Uttar Pradesh, by promising residential flats under a redevelopment project. In Venezuela, a state of emergency has been declared following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude that caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, President Delcy Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Rescue and recovery operations are underway in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भूज શ્રોતા મિત્રો, અત્યારે બરાબર બપોરના 1:10 થાય છે. રજૂ કરીએ છીએ સુગમ સંગીતનો કાર્યક્રમ. આજના સુગમ સંગીતના કાર્યક્રમના કલાકાર છે પ્રફુલ્લ દવે. તેમના કંઠે પ્રથમ સાંભળીએ કવિ પિંગળની આ રચના.

दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में। आज है बॉलीवुड की अदाकारा करिश्मा कपूर का जन्मदिवस। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया हुआ है। उन्होंने अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत फिल्म प्रेम कैदी से 1951 में की। आइए आपको सुनवाते हूं इस फिल्म का गीत साधना सरगम की आवाज में। उनका साथ दिया है बाला सुब्रमण्यम ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत बद्ध किया है आनंद ने।

दोस्तों करिश्मा कपूर ने प्रेम कैदी फिल्म के बाद जिगर, अनाड़ी, राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कुली नंबर वन और साजन चले ससुराल जैसी हास्य फिल्में भी की। उन्होंने जीत फिल्म जैसी थ्रिलर फिल्म भी की और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही रोमांटिक फिल्म राजा हिंदुस्तानी। आइए उसी फिल्म से आपको सुनाते हैं अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा गीत, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों करिश्मा कपूर को दिल तो पागल है राजा हिंदुस्तानी, फिजा और जुबेदा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एवं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिल चुका है। आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

बोलते पागल है, उदित नारायण और लता मंगेशकर के गाए आनंद बख्शी के इस गीत के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। जय जवान।

0: जयभारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और बूथ केन्द्र से किया गया। ठीक 2:15 पर सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ई मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण व्यग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
4: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि

0: जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने यह बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। यह मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी

0: हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले छह हफ्ते में हम छह नए डेस्टिनेशन को क्वालिफाई करके ढेर सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह को

0: सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इसी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP Radhakrishnan और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट के दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढही, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

विराज विजय उपाध्याय ने कंठे गवायेल उमाशंकर जोशी ने गीत रचना साथ आज गैर फिल्म संगीत नो कार्यक्रम समाप्त थो। 354.6 मीटर से लेकर 846 किलोहर्ट्ज पर आप सांभ आकाशवाणी ने अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भूज केन्द्रों प्रसारण श्रोता मित्रों अत्यार बराबर बपोर त्रया आज सभा ने अं विराम आप सांध्य सभा प्रसारण समय अपने फरीशू अत्य रजा आपसू। नमस्कार।

0: આજની બીજા સભાના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. સવારે સાંભળીએ દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં લવલી નિગમ. आज संविधान हत्या दिवस है. इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान का सीधा हमला था. श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती है.
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है. झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत बीत गया, एक बरस बीत गया.
3: सीख तो में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं. श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गर्जन सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही. श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के समा सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेने रमेश शामिल हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई ताबक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली. झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी. नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा. सड़क पर

0: sıcaklığa nedeniyle AVM'li en sürü çayını kadri. Bu da yürüyün polis ve rancı unutma resale.
1: कमाल है उस चांद को घंटों देखता रहा उसने एक बार भी नहीं टोका
2: तो चांद को ही देखे ना
1: मगर वो सांस नहीं लेता

esto. Lehenik zeskuntze katzin ez epatze. Agar epatzak nahu, inahobat nahu, shari nahu, zendit nahu. Kabhi, behazal nahu ke saamne pesh kara tha. Kabhi, usme ek awaz aur bhi shamil thi. Is awaz ki malika neha aaj is waqt hamare beech hai. दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से तुम्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अलग कर दें।

0: जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इन्फर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या गर्भगायनिक हॉस्पिटल हिम्मतनगर गुजरात से बोल रही हूँ। हर दंपत्ति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपत्ति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भ धारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपत्ति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं

0: बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे आयुर्वेद तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खोकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। थैंक यू।
1: ग्रिफिथ बायो साइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी। जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
2: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल प्रजापति, मैं भी वुमन केयर हॉस्पिटल मतलब। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी कि बचपन कई दंपति का ये सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है कि एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद भी गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF अब उपलब्ध है। अब समय है कि इस विषय पर हम बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टरों से उचित मार्गदर्शन लें।
1: ग्रिफिथ बायो साइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी। जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
0: नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या गर्भगायनिक हॉस्पिटल हिम्मतनगर गुजरात से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बचपन कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खोकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। थैंक यू।
1: ग्रिफिथ बायो साइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: लोक संगीत में कार्यक्रम में हमें सम्मिलित दलू भाई भरवाड़ न स्वर भाव लोकगीतों।

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी है। हाल ही में नरेश गुलवानी का देश विदेश का समाचार सिंधी में बदलना सब का पहला मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिए के भारत तारीख जो कारो भाव कर सको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून का 18 जून तक सेशंस जे सरकारी दौरे पर रहेंगे। भारत की सदारत में ब्रिक्स तवांगी मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन अज पार्लियामेंट में राज्यसभा के नवन चूंडियल मेंबर एर चूंडियल मेंबर के अहदे ए राजदारी जो कसम खरायो। मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप ए की मैच में अज शाम भारत जो मुकाबलो बांग्लादेश से। हाँ, समाचार तफसीलवार बदलना। अज संविधान हत्या दिवस है। अजोके दिन यानी 25 जून साल 1975 में रात जो मुल्क में इमरजेंसी लागू की गई हुई। अज मुल्क भर में मुख्तलिफ हंधन के इन दिस में जुदा जुदा प्रोग्राम मुंतजम कया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संविधान हत्या दिवस के मौके पर लोकशाही सिद्धांतों की हिफाजत लाए पेंजे इरादे और असूलन पे कायम रहने मानन के श्रद्धांजलि अर्पण कई। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री चाहो तो इमरजेंसी लागू करण जोरचक पे हमलो करण जाय हो। प्रधानमंत्री इन मौके पे अगोरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पारा लिखल कविता जो कुछ सिटू पढ़ू अचो तो बदो यह सिटू।
1: जब आबाद का एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने कविता और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया। जुलसाता जेठ मास सरद चांदनी उदा, जुलसाता जेठ मास सरद चांदनी उदा, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक वर्ष बीत गया।
2: शीत तो है सुमता जब किंतु विकट प्राण जगत से अंदर तक बुझा मुक्त गीत गया, एक वर्ष।
0: इमरजेंसी के बारे में मरकजी मंत्री शिवराज सिंह चौहान
3: आज के दिन ही इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को तार तार कर दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, विचारों की अभिव्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता को पैरों तले रौंद दिया गया था, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था, नाक्षा बरसाई गई, करंट लगाया गया और सत्तर काले दिन थे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून का 18 जून तक सेशंस के सरकारी दौरे पर रहेंगे। इन दौरे दौरान प्रधानमंत्री सेशंस के राष्ट्रीय दिन में मुंतजम खास प्रोग्राम में मुख्य मेहमान तौर हिस्सों वो ध्यान दारू तो सेशंस 18 जून तेजो पंजाबो कौमी भी मनाए रो है। प्रधानमंत्री जो सेशंस न ही बो दौर है इन खा तो साल 2015 में श्री मोदी सेशंस की मुलाकात कई हुई। इन दस में विदेश हजरात बुधा है तो कौमी दिन रखल खास प्रोग्राम में भारत भरी फौज की एक टुकड़ी ए भारत बहरी फौज का ब सामूंडी बेरा भी हिस्सों वा। उम्मीद है तो प्रधानमंत्री के इन दौरे से भारत ए सेशंस जहा बी रिश्ता अना मजबूत। मरकजी तवानाई

0: प्रधानमंत्री जी 11 बैठक के खिताब में उन्हें साहिब चाहो तो विकास जे मकसदन ए लगातार विकास के हासिल करने में सस्ती विश्वास जोगी ए टिकाऊ तवाना लाजमी है। उन्हें साहिब चाहो तो
1: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
0: ब्रिक्स तवानाई मंत्री जी बैठक का सुबह भी जारी रह दी। इन्होंने तवानाई हिफाजत है लगातार विकास सबनी ने तवानाई मौजूदगी और नवाचार जैरन खेतन सरकार के मजबूत करने पर मुख्य चर्चा थी रही है। ही खबरों तभी आकाशवाणी में बनी रहे हो वद्दी के खबरों में तभी ऐसा नहीं वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था। ही खबरों तभी ऐसा नहीं यूट्यूब चैनल AM News गुजरात पर बनी सको था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अभी पार्लियामेंट में राज्यसभा के नवम चूंडल मेंबरन ए बीहर चूंडल मेंबरन के औहदे ए राजदारी जो कसम खड़ा। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जो राज्यसभा मेंबर ताई तगाक ए दिभाषिष संपत राय में शामिल है। नवम चूंडल मेंबरन में झारखंड में खुद मुख्तार पार्टी उम्मीदवार परिमल राठौर ने दो औहदे पद जो कसम खड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अज रेलवे के उच्च सतह के ऑफिसरों से खास बैठक गई। बैठक में भारत के रेलवे के माल ढोने जो वद में वद बेहतर जरियो बरकरार रखने लाए कई दुरुस्त में सुधार अंदर चर्चा थी। बैठक के दौरान सरकारी जरिए बुझाया तो सीमेंट और लून जैरन शहन वास्ते खास नमूने रेल का दबा तैयार किया गया। इन कामयाबी जो यो महसूस कराए गए तो किसने किसने जो उद्योग की जरूरत मुताबिक दबन जो डिजाइन करना तमाम अहम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कोलकाता में थैला हादसे पे गहरा दुख जाहिर किया है। गौरतलब है कि कोलकाता में एक वेयरहाउस की छत दही पट पड़ने सबब यह हादसा हुआ है। इन दर्दनाक हादसे में मारजी जाने जो अदद वही नवम तक पहुंचा है। इन अटकल वीह जना वे इलाज हैं। इन वाक्य यानी हादसे बाबत सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू गहरी दिलसोजी जाहिर कई और फौत थियलन के कुटुंबन लाइ पूरी हमदर्दी जो इजहार कयो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हादसे बाबत बेहद अफसोस जाहिर कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाक्य में फौत थियलन लाइ बेहद दुख जाहिर कयो और संदन कुटुंबन वास्ते 2,00,000 रुपया मुआवजो देने की भी पधराई गई। जख्मन थियलन के प्रधानमंत्री राहत फंड में 50,000 रुपया बतौर मुआवजो बनो वेंदो। कोलकाता में ताराकला में थे हादसे में मारजी वाले जो अदब वही नवन से पहुंचे हुए हादसे बाद अटकल 29 जख्मियों के तुरंत अस्पताल पहुंचाए हुए हो जिनमें हमारे वीहन जो इलाज जारी है। इन हादसे के गंभीरता से खनन के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी असेंबली के खिताब में बताओ तो हादसे में जवाबदार शख्सन के कतई बख्शो न वेंदो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री इन हादसे में मारजी वाले बेहद दुख इजहारियो ऐं फौत थियलन जे कुटुंबन खे राज्य सरकार पारां 10,10,00,000 रुपया मुआवजो ॾियण जी पधिराई गई। हादसे में जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि तिन खे 1,00,000 रुपया बतौर मुआवजो ॾिनो वेंदो। इन हादसे जी जांच वास्ते ओलह बंगाल सरकार SIP क़ाइमु कई आहे। SIP टीम हाणे ताईं इन केस में 5 शख़्सन खे सोगो झलियो आहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंजुला में आने जल्जले से थे प्रभावित गहरा दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री वेंजुला सरकार ए उतो जे मारन खास करे पेंजन अजीजन के निमारे मारन परिवार में पेंजी दिलजोगी जाहिर कई। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनजो शहीदी दिया इन मौके पे गृह मंत्री अमित शाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनके श्रद्धांजलि अर्पण कई। अज सुचेता कृपलानी की जन्म जयंती है। अजोके डी यानी 5 जून साल 1908 में हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। ये भारत की आजादी की हलचल में एक सिपाही हुई है एक सियासतदान पर हुई।

की महिला मुख्यमंत्री बन जाने वाली पहली जायफा हुई। बॉम्बे शेयर बाजार में सेंसेक्स अभी 109 पॉइंट वधी 77,100 ते बंद थियो। वडा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 34 पॉइंट वधी करी 24,056 ते बंद थियो। आईसीसी महिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जे ग्रुप ए मुकाबले में भारत के मुकाबले बांग्लादेश से थींदो। यह मैच भारत के वक्त अनुसार शाम जो 7 बजे मैनचेस्टर में खेली वेंदी। मौसम महकमे ओलह बंगाल के हेठां वारनि इलाइक़नि में ऐं सिक्किम में 30 जून ताईं तेज़ बरसात होण जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। आख़िर में ख़ास ख़बरूं हिकु बार ॿीहर ॿुधंदा। अॼु संविधान हत्या दिवस आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ इन ॾींहं खे भारत तारीख़ जो कारो बाब करे छॾियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून खां 28 जून ताईं सेल्सियस जे सरकारी दौरे ते रहंदो। भारत जी सदारत में ब्रिक्स कवानी मंत्रियुनि जी बैठक गुरुग्राम में शुरू। उपराष्ट्रपति राज्यसभा जे चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन अॼु पार्लियामेंट में राज्यसभा जे नवनि चूंडियल मेंबरनि ऐं ॿीहर चूंडियल मेंबरनि खे उहिदे ऐं राजदारीअ जो कसम खयो। ऐं मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रुप ए जे मैच में अॼु शाम भारत जो मुक़ाबलो बांग्लादेश सां थींदो। सिंधी समाचार जो इहो अंग ते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त।

संगीत कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक एस एल कंडारा, आज आठवीं कड़ी सुनिएगा। इंद्रधनुष में इनसे मिले कार्यक्रम में फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला सिलसिला। लोकर लो दर्शन, लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का।

सुबह 6:05 पर वल्लभदार 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान वाइन का विहंगम संसार संगीत सविता कार्यक्रम में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी कल सुबह और शाम 6:45 पर कलाकार है वायलिन वादक एस एल कंडा। पूरे विषय गीत कार्यक्रम सुबह 7:30 पर अंधेरा ही प्यार के, सुबह 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी लेखक मिलिंद सबनीस प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा संगीतकार इलैयाराजा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। दिन 11:00 रंग तरंग

सुनिएगा अरुण शेखर की कहानी उन दिनों की बात है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे सुना जा सकता है। 5 बजे छह गीत कार्यक्रम होगा। 5:30 पर शाम 7 बजे जयमाला।

का 10 बजे छाया गीत सुनेगा। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये था लेखा जोखा विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुनहरी धड़कन।

वसीम तो ज्यादा मैंने स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पढ़ नहीं दिया। वसीम ने कहा वो तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिता रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए। कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए रिखम साथ तो होते ही सब राग में, साथ के बाद रिखम कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो सिर्फ स्वर है सार का। फिर भैरवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है, रिखम और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पधा निसा
1: जी,
2: मैं आपको इस पर करके बता।

0: इस राग की खासियत है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है।
1: पंडित जी, आहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मनदा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल भगाना। पूछो न कैसे मैंने रंग बिताई।
2: ऑल-टाइम ग्रेट गीत है वो।
1: जी जी।
2: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी है पीसेज है
1: जी हाँ
2: बहुत सुनने का दिल है।
1: बजाइए, सुनते हैं
2: जी।

0: अनेक स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। श्रोताओं, ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रवीश।

नसीम तो ज्यादा मैंने स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पढ़ नहीं दिया। नसीम ने कहा वो तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिता रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को मेहमान। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरिया समझनी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
3: जब आपातकाल का एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी। उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया। जुलसा का जेठ मास सर्व चांदनी उदार, जुलसा का जेठ मास सर्व चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत बीत गया, एक बरस बीत गया।
4: शीत क्यों में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति बीत गया, एक बरस।
2: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कैया और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के तरिता भक्त, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुल क्लब ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किंबी शर्मा, देविका सहवाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। महिला सिंगल्स में किंबी शर्मा और देविका सहवाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी समीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। वेनेजुएला में विनाशक भूकंप ने कारणे 32 ना मौत। जानहानि अंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए दुख व्यक्त कर्यु। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जणाव्यु के ऊर्जा प्रणालीओनी निर्माण माटे ब्रिक्स सहयोग ने मजबूत बनावा माटे भारत ना प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान हत्या दिवस निमित्त कटोकटी दरमियान लोकशाही मूल्यों रक्षण में अडग रहेला तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पी। दक्षिण आफ्रिकाए साउथ कोरिया पर विजय मेळवीने प्रथम वखत फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में प्रवेश कर्यो। शाला प्रवेशोत्सव आज तीजा दिवसे राज्यमंत्री त्रिकमभाई झंडाए विथोल नखत्रणा और मथल खाते बाळकों ने शाला प्रवेशोत्सव करावियो। विथोल कुमार प्राथमिक शाला ने मथल प्राथमिक कन्याशाला नवनिर्मित भवन लोकार्पण करायु। अमृत भारत स्टेशन योजना हेठळ गांधीधाम हयात रेलवे स्टेशन 78 करोड़ रूपया खर्चे थशे कायाकल्प। काजरी संस्था द्वारा खेत बचाव अभियान अंतर्गत सायरा और देवपर किसान जागृति कार्यक्रम में 58 खेडूतों ने जैविक खेती अपनावा आह्वान करायु। भूज तालुका हबाई गाने वागेश्वरी माताजी मंदिरे भीम 11 750 वर्ष जूनी कुंड सफाई परंपरा उजवाई। राज्य में पहली जुलाई सुधी हलवा मध्यम वरसाद आगाही। मुंबई में कच्छी रेलवे प्रवासी प्रश्नों योजा बीजो लोक दरबार। वंदे भारत ट्रेन शुरू करने मांग उठी। जाहिर थे सीए परीक्षा परिणामों में भूज विद्यार्थी झड़क्या। अनेक युवा बनया चार्टर्ड एकाउंटंट। भूज शहर में इंदिराबाई कन्या विद्यालय खाते प्रगति प्रवेशोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत नायब जिला विकास अधिकारी माधुरीबेन पटेल द्वारा बाड़ाओं ने शाला में प्रवेश अपाय। मुख्य समाचार पूरा थया।

आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं आतिश की लिखी झलकी लो कर लो दर्शन, निर्देशक हर्षवर्धन गवई।

0: वो बात सही यार की, लेकिन
1: यही कह रहा था।
0: हाँ आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
1: लगते तो वही है। एक मिनट,
2: अरे जोगिंदर सिंह जी, अरे जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
3: ओ जी,
2: अरे क्या है, क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घर रहे थे?
3: और क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
0: क्यों, क्या हो गया,
1: क्या हो गया?
3: अरे यार खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी, हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
0: हाँ
3: जी।
0: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
3: तो यार हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
3: बस सिर्फ 1 करोड़ पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
0: अच्छा अच्छा।
3: हाहाकार मच गई, मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
1: बड़ी बुरी खबर है।
3: भला हो वाहिगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा दिया।
1: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
3: जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन।
2: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बताया था?
1: लेकिन ज्ञान गोपाल जी,
2: अरे सच्चाई है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
1: अच्छा।
2: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था, सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बढ़ाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
3: अब जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: क्या बताए सरदार जी, क्या माहौल हो गया है, इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
2: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी है? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
1: तो
2: एक और बुरी खबर।
1: वो क्या है?
2: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहाँ जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए।
1: जानते हो
2: 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
1: माय गॉड।
3: हाँ जी ये सही कह रहे हैं।
1: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी। अरे वहाँ भी तो बेचारे लोग खामखाने मारे गए ना,
2: अब क्यों नहीं जलने वाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे घर में? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है, हादसों में मारे जाते उनके बारे में बस एक ही राय, अभी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अभी साहब उनकी तो किस्मत बस इतनी ही जिंदगी होती थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
1: लेकिन यही तो कहा जा रहा है।
2: क्या कहा जाता है? आप सीताराम जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया।
1: अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं,
2: अब हम आप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब तो उसी की मेहरबानी है। बताइए सरदार जी चुप कहें, क्या गलत कर रहा हूं मैं?
3: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
2: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुटलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है भैया?
1: ये जो जानवर है ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना।
2: ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ही कभी?
1: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
3: अरे भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
1: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
0: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
1: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: भेकू चंद है हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं भेकू चंद है, फेंक रहा है। अरे बता, जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहाँ है कलर? अब बता दो कहाँ, दिखाओ जरा मुझे, दिखा भाई।
1: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूँ मैं नास्तिक हूँ, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
0: जवाब जवाब है, कोई जवाब?
1: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं,
0: तुम भी?
1: नहीं। क्या दिखाई देती है किसी को जिंदगी? क्या है, जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी मिला हूं वो वेज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
0: क्या बात कर रहा है भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई। ओ हाँ यार, सामने भी करवा दो दर्शन।
1: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
0: ठीक है जी, आ जाएंगे।
1: और सरदार जी?
0: बिल्कुल आ जाएंगे जी। भैया मुझे तो बख्श दो।
1: क्या बात कर रहे हो,
0: चलिए आप भी चलिए।
1: नहीं नहीं नहीं, यहाँ ही आओ तो अच्छा है।
0: हाँ
1: भगवान की भी यही इच्छा है,
0: तो आप लोग दर्शन कर लो जी।
1: तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर।
0: अच्छा जी, सच लिया का हाल राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे। जी सच लिया का हाल जी,
1: भाई भगवान दास राम राम।
0: आइए आइए,
1: आ गए आप, पर ये क्या साथ में इतनी भीड़ में?
0: अब क्या करें, जिसने भी सुना बड़ा चलाया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ में चलो।
1: चलो भाई ऐसे करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक एक करके आना।
0: ठीक है,
1: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, लो दर्शन।
0: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
1: ओ अच्छा जी, ठीक है जी, मैं जाता हूँ, लाइन लगवाता हूँ। शक्ति शक्ति आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊँ भीतर दर्शन करने?
1: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
0: शर्त वर्त? यहाँ पर
1: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
0: ये झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
1: जिसने पाप ना किया हो।
0: ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
1: और जिसने किसी को धोखा ना दिया हो।
0: क्यों धोखा होगा देने और भी कोई शर्त है आपकी?
1: जिसने रिश्वत न ली हो न दी हो।
0: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
1: किसी लड़की पर बुरी नजर न डाली हो।
0: हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
1: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी टांका झांका ना हो।
0: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? भीतर जाओ दर्शन करने।
1: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
0: ठीक है,
1: ये चला। क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन भक्ति।

0: दर्शन, अरे भगवान दास जी दर्शन की बात करते हो, हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
1: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रीकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: वसीम तो जाने माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। वसीम ने कहा वो तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिता रोल करने में क्या मजा है, वही करते रहोगे।
1: विविध भारती पर

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को मैं भी। उधर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा बिलों का गम दूरियां समझती, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल सुनी। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी, इस मंगलवार सेमिनार के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: शाम 4 बजे सिर्फ भारत पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ी चुमरिया तोड़े नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था, जो तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये मेरे मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: सुनाने भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 一点点是你的作家。
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं एवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 में राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 26 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए

0: 21 जून से आज तक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोरोकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठ वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट की लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्वास्थ्य को हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निश्चय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटी टीबी के मरीजों की बहुत मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निश्चय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंडल जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेनिस रोड्रिगेज़ ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
0: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्य में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेनिस रोड्रिगेज़ ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज़ ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंकायला और भाष्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनेरम शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल बसवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है।
3: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना

0: युद्धपोत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजु द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजे समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं शिव चढ़नी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक गलत की खबरों के साथ है सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा।

0: the Desai government.
1: Let's listen to what Health Minister J.P. Nadda had to say in an event observing Samvidhan Hatya Divas.
2: हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: संस्कृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव वर्मा।
1: बहुत ही बुढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।
1: वो घड़ी हो जो पास हो।

के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

0: फिल्म जेलर। फिल्म देख कबीरा रोया।
1: हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलकर काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चार से सुना समझा। और ये फिर एम हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था। कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी भाई, एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 में आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जय मल्ला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, राणा सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मधुर साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने डैड को म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मैंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, रजनी कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए कि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मैडम मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हारे दस्तक के लिए अवार्ड मिला और मैं तुम्हें मोबाइल। इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और बस तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा बहुत निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम ये सेम सूट्स पहन के दोनों

मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था, जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पर ले जा रहे थे, हम गाड़ी सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं अपने से कार छोड़ा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ, क्योंकि बड़ी सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की साइरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों में समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माता जी की तरफ देख के कहा कि देखो

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने स्थानीय दुनिया से अलविदा कह दिया।

शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि जैन। लूटना मनाना ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो लूट कर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो लूटते हैं तो उदास नहीं प्यारे लगते हैं और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते।

खुशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, मिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुना।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी इज्जत का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूँ ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना।

0: क्या करना है तुझे?
1: हो रहना किसी के
0: क्या करना है तुझे?
1: और हो रहना किसी के
0: अंदर है तो याद करोगे समझे
1: समझे।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रोकने की और मनाने की। और अगर पड़ोसी रुक जाए और कारण पता न हो तो पर मनाना तो जरूरी होता है ना। और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं सुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आँखें बरसों से कह न पाई मुझसे, उन्हें अनकही बातों की अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, कि इन अदाओं से और क्या।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चले अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए तो जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम में, ये जो रूठे हैं लब आपके मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही, आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: यसीन तो ज्यादा मिला स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीन ने कहा वो तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही दिशा पिता रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: சுட்டி கருக்கம் ரெண்டு பரங்கு
1: समाचार के साथ में रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकाला और भाष्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
4: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
3: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendments Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees, and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees, and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Center in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, QHR will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 a.m. IST. And that's the end of this news bulletin.